ये चोरन रोक यार मैं हो रहे चाना मेरे उनसे जो चोरन रोक ये भी चंसा ना मैं हो रहे चाबी निजी यो बादा जिन्हें साक्षी ने चाहे तो ने जानरे ने शूटिंग वा चामी हो रहे ने लूंगी से जो यार कहते मैं ना वादा जांबा मेरे उनसे जो चाबा जुची मुसावा गो जो शेका ना वादा हिंबा लोबा शुभा चामा मैं हो रहे चा ने पुवी तुम्हें कहते ये भी दूधो तो चले मिने चंगा तो ताजे चबन रोक रहे संगना बा ठेन जना रेसिपी नुदन चचा ह्योचा श्याला लुगी सेरो